0: आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जो को कई दिन से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला,
1: अब तो हमारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं।
0: गंगी ने पानी न दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली,
2: यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूं।
0: जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा,
1: पानी कहां से लाएगे?
0: ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे?
1: हाथ पांव तुड़वा आएगी, और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे?
0: इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है ना मौका, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजर और मोहतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहां बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोंटे करने लगा।
2: हम क्या नीच है और ये लोग क्या ऊंच है? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं, यहां तो जितने हैं एक से एक चंटे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे, अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारी गडरिया की बेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्ही पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है, यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है।

0: बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी।
1: खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है।
0: हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है।
1: हाँ, यह तो ना हुआ कि कसलिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है।
0: लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही तो लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है?
1: मत ला जाओ दीदी, दिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाऊं, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता।
0: दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली, किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पाव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा गड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न आई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा दड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही।
2: ठाकुर, कौन है, कौन है?
0: पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि झोंकू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी।

बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में डर या भय से कैसे निपटा जाए इसके बारे में बात करा था। आज के एपिसोड में आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बात करेंगे अपने आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें। तो आइए दोस्तों, एपिसोड शुरू करने के पहले सुनते हैं ये गीत, मैंने देखा तूने देखा, फिल्म दुश्मन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: बहनों और भाइयों, आत्मविश्वास की कमी ज्यादातर गलत तरीके से प्रबंधित स्मृति के कारण होती है। आपका दिमाग काफी हद तक एक बैंक जैसा है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचार जमा करते हैं। ये विचार जमा बढ़ते हैं और आपकी याददाश्त बन जाती है। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये गीत, प्यार का समय कम है जहां, फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।
1: अरे

बहनों और भाइयों, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप अपने मेमोरी बैंक से कहते हैं, मुझे इसके बारे में पहले से क्या पता है, और आपका मेमोरी बैंक स्वचालित रूप से जवाब देता है और आपको उस तिथि से संबंधित जानकारी प्रदान करता है जो आपने पिछले अवसरों पर जमा की थी। इसलिए आपकी मेमोरी बुनियाद है कि वही है जो आपके नए विचार के लिए कच्चे माल का प्रोड्यूसर है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, मेरी सपनों की रानी, फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

बहनों और भाइयों, आपके मेमोरी बैंक में टेलर बहुत ही विश्वसनीय है। यदि आप उनसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार वापस लेने हैं जो मैंने अतीत में जमा किए थे, जो यह साबित करता है कि मैं हर किसी से कमतर हूँ, तो वह कहेगा कि सुनो, दो बार ऐसे हुआ था। याद करें जब आपने ये कोशिश की थी और आप असफल हो गए थे। यह भी याद रखें कि आपके छठवीं कक्षा के शिक्षक ने आपको चीजों को करने में आपकी क्षमता के बारे में बताया था और यह सिलसिला जारी रहता है। और मिस्टर टेलर आपको पिछले विचारों को खोदता रहता है, जो साबित करता है कि आप असफल होंगे। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, फिल्म अजनबी। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, दूसरी ओर यदि आप टेलर को इस अनुरोध के साथ बताते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्या आप मुझे कोई ऐसा विचार दे सकते हैं जो मुझे आश्वस्त करे? इस बार टेलर आपके द्वारा पहले जमा किया गया विचारों को बताता है कि आप सफल हो सकते हैं। एक सामान्य स्थिति में आपके द्वारा की गई उत्कृष्ट कार्यों को याद करें। याद करें कि आपके अच्छे मित्र ने आपके बारे में क्या कहा इत्यादि। मिस्टर टेलर आपको उन विचारों की जमा राशि को वापस लेने की सुविधा देता है जिन्हें आप वापस लेना चाहते हैं। आखिर यह आप ही का तो बैंक है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। फिल्म आनंद, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी और इसे गाया है मुकेश ने।

बहनों और भाइयों, आपके दिमागी बैंक के कुशल प्रबंधन के माध्यम से आत्मविश्वास पैदा करने के लिए यहाँ दो विशिष्ट चीजें हैं। पहला, अपने मेमोरी बैंक में केवल सकारात्मक विचार जमा करें। आत्मविश्वास से भरे सफल लोग अपने मेमोरी बैंक में सकारात्मक विचार रखने में माहिर होते हैं। एक बेहतरीन योजना है, सोने के पहले अपने मेमोरी बैंक में अच्छे विचार जमा करें, अपने आशीर्वाद गिने, कई चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी होना चाहिए, अपनी छोटी जीत और उपलब्धियों को याद करें। तो आओ दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत प्यार के इस खेल में। फिल्म जुगनू, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

बहनों और भाइयों, अपने मेमोरी बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकाले। जब आप नकारात्मक परिस्थितियों को याद करते हैं तो अनुभव

के अच्छे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, बुरे को भूल जाए। यदि आप अपने आप को नकारात्मक पक्ष के बारे में सोचते हुए पाते हैं तो अपना दिमाग पूरी तरह से बंद कर ले। दूसरा, अपने मेमोरी बैंक से केवल सकारात्मक विचारों को वापस ले। अन्य विचारों को दूर होने दे और अपना आत्मविश्वास दुनिया के शीर्ष पर होने का एहसास ऊपर की ओर बढ़ता है और आप अपने डर पर विजय पाते हैं और आत्मविश्वासी होने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत कल के हसीन मुलाकात के लिए। फिल्म चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।